हरे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे श्री तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले

मिलै तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया सैल पत्थर मह जंतु उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी। सत संगत

तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुत जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर।

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई,

तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा।

सब नीत आया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाउ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसनो तू जानाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वे कह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरडै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मुह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूण मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहा।

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जप तप संयम तर

शर्मा, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कमेव बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दे मुहे बचाबू, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आसंगरिय, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा, राख ले हो मुहि रखन हारे, साहिब संत सहाय।

काल पाए ब्रह्मा भक्तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आदंती कै अवतारा, सोई गुरु समझ हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचल अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन सिर सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रह

अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते

तरस पे होई, तरस पया मेरा मत हुई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेरा मत हुई, सतगुर

0: शून्यहार सत्याकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, हम भीखक पेखारी।

तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गुले, सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै,

0: साहब वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उदार हर नागर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रहियै तुध पावै ता नाम जपावै सुख तेरा दिता लहियै। धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र ते इलाही दरबार दीआं हाजरियां भर के इलाही बाणी दे पाठ कीर्तन ते कथा सरवण करके साहिबां दी बख्शां लहरी परम सत्कार जोग सतसंग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी विभाग जो अरदास उपरंत आप जी ने बड़ा ही सुंदर हुक्मनामा सरवण किया है। गुरु कृपा करे सानू हुक्मनामे की उपदेश से चलन की समर्थ बख्शे। सूचनावां संगतों को बेनती है जो नॉर्थ ते साउथ हाल की दो मंजरियां बिल्डिंगा बन रही उन्होंने वास्ते मत तो मत दसवंध करके हिस्सा पा के गुरु जी बख्शा लाओ जी। तो अगे जिन्होंने सहज पाठ सरबत के भले वास्ते घर रखे ने उन्होंने बेनती है कि उन्होंने भोग आपने 21 जून ऐतवार को मेन हाल इतने 10 बजे सवेरे आप जी ने 10 तो पहला पुज जाना। जे आप जी ने अपना नाम नहीं लिखाया हले अरदास वास्ते टैक्सट कर देना 408-712-4145 से 408-712-4145 से। संगरांद 15 जून आ रही जी हाड़ दी ते 16 तो आप संगती रूप पवित्र बाणी सुखमनी साहब जी के पाठ रोज शाम मेन हाल विच करने ने 7:30 तो लैके 8:45 तक। धन धन गुरु अर्जन देव जी महान शहीदी नूं समर्पित जो 18 जून है। 18 जून भी वह नदेरे समरी सवेर शाम कीर्तन दरबार होणगे पर 21 नूं सारा दिन इस पासे ही समर्पित होगा कीर्तन दरबार का। 18 शाम ही सिख हैरीटेज नाइट हैगी जांच की बेसबाल गेम 6:30 शाम को टिकटा लैके जाने की कृपा करनी उत्थे परिवार समेत। डॉक्टर अलंकार सिंह जी पटियाला यूनिवर्सिटी के दीन साढ़े पास आ रहे हैं 28 जून कीर्तन करेंगे वो दोपहर ऐतवार 11:20 तो 12:30 तक। 26-28 श्री शंकर इलाका निवासी लड़के ते संगत लड़के मना रही ने धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का ब्याह का पुरब। तीन दिन इलाही बाणी दे अखंड पाठ की सेवा से गुरु के लंगर की सेवा। गुरमत कैंप लग रहा जी फ्री बच्चों वास्ते 6 साल की उम्र तो लैके 15 साल की उम्र तक के दाखले फार्म ऐसा आदि ऐतवार आप जी ने भरने वास्ते बेनती की जाती है जी। फस्ट कम फस्ट सर्व के हिसाब न होगा क्योंकि कई बार साड़ी लिमिट होंगी असी इन्ने ही बच्चे लैने बच्चे बच्चियां फिर उस तो बाद रह जाते हैं बाकी दे। फ्री कैंप हैगा सो जिन्होंने उस लंगर सेवा पानी है जां होर वो भी उस दिन ऐतवार भाई अरण सिंह हुणां नूं संपर्क कर लैण। आओ हुण आपां कीर्तन पहला सरवण करिए। भाई साहिब अहंकार सिंह जी उन्हें वाले पासों 7 बजे तक फिर कथा करनगे भाई साहब भाई सिकत्तर सिंह जी 7 तो लैके 7:45 तक 7:45 तो लैके 8:30 बजे तक कीर्तन करेंगे भाई साहब हरप्रीत सिंह जी से उन्होंने जथा 8:30 बजे समाप्ति होगी जी अज के दीवान की। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

पावन बचपन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्हां दी पावन रसना तो अमृतमई बाणी कहिंदे ने स्वास स्वास सिमर महाराज कह रहे ने जेते सास ग्रास मन लेता जिन्हें भी स्वास लैंदा है जिन्हें भी भोजन दियां बुरकियां लैंदा है कहिंदे ने एक एक स्वास विच उन्हों चेते कर महाराज फिर

अपने घरां नूं जाइए। महाराज दे दर्शन करके हाजरियां भर के दरबार दीआं यह बख्शिश नाल जपदे जपदे जाइए, फिर यह लोक सुखीए लोक सुहेले। नानक हर प्रभु आपे मेले दी दात तुहाडी साडी सभनां दी झोली पै जाए। अगला प्रोग्राम बड़े प्यार नाल भाई साहब जी ज्ञानी सिकंदर सिंह जी गुरमत विचारां नाल आप जी दीआं झोलियां भरनगे। असीस देओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।

सतनाम। श्री वाहे गुरु जी, दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ।

दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हौ करी वखियान। बेसमार अथाह अकंत अतुले ज्यों बुलावा त्यों नानक दास बोले।

मेरे मन सतगुर सेव सुख हो, जो इच्छा सोई फल पाओ, फिर दुख ना व्यापे कोई। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला। ओदे नाल जुड़े रहिए, सतगुर पाछे कंधन की पाई, सतगुर सबना दा भला मनाए दा तिस्ता बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ।

हर मेल लहो वड़ियाई। नानक गरीब टह पया दुआरे हर मेल लहो वड़ियाई। अखी काड तरी तरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुरे आराधी जे मार कड भी तिहाई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई।

पर पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई। छखड़ झांगी मीहो वरसै भी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुरु पै जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुद सेवै सो तू है होवे तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई। जिस तू देहे सोई जन पाए होर ने फल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुरु अपना सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वड़ियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किस थाए न पाई। पाला ककर बर्फ बरसै गुर सिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैण देखो गुरु अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण आराधी।

0: नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अघाई, नानक का प्रभु पूर रहो है, जत कत तत गोसाई। वाहिगुरु जी।
1: सोहेलारा गौड़ी दीपकी माला पहला एक ओवंकार सदगुरु प्रसाद जयकर कीरत आखी है, करते का होए विचारो तित कर गावो सोहेला सिवरु सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला हो, वारिजित सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने की मत ना पवे ते दाते कवन सुमार, संबत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देव सुजन सीसड़िया जो हो वै सब सुमेल कर कर एव पहुंचा, सदरे नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे अमन रागा सा मल्ला पहला, छे कर छे गुरु छे उपदेश, गुरु गुरे को वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख बुढ़ाई तो रहाओ विसे चसियां घड़ियां पहरा, तिथि वारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के खेते वेस राग धनासरी मल्ला पहला, गगन में थाल रवचन दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, तू मल आन लो पवन चवरो करे सगल मन लाए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पाव खनला तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत करी रहो, सहस तब नैन नन नैन है तोय को, सहस मुहूर्त नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध विद, सहस तब गद इव चलत मोही, सब में है जोत जोत है सोए तिसके चानन सम, चानन होए गुरु साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिनों मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते फिर नाय वासारा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भव भरिया मिल, साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हरलि मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि कुन वड्डा है, कर दंडौत कुन वड्डा है, रहा उसा कथर रस साध न जाण्या, किन अंतर हो में कंडा है, जो जो चले चुके दुख पावे, जमकाल सह है सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पाव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, वो सोब खंड ब्रह मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख खंडा है, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनंती सुनो मेरे मीता संत, टहल की बेला इहां खाट चलो, हर लाहा आगे बसन सुहेला, औद कटे दिनस रहना रे मन गुरमिल का सवारे राव, एहो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी, इसे जगाए की आवे एव सकत कदा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर मैल पाओ सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का
2: खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जब तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराई, नानक ताकै लागो पाई। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै।

नानक जन का दर्शन दसना प्रभु को सिमरैसी तनवंती प्रभु को सिमरैसी पतवंती प्रभु को सिमरैसी जन प्रवान प्रभु को सिमरैसी पुरख प्रदान प्रभु को सिमरैसी बेमोहताजी प्रभु को सिमरैसी सर्व के राजी प्रभु को सिमरैसी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंद कनेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु न छूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पात सिमरै से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल आकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयु नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा प्यां दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हुवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जी मार गयो जात केला तै हर नाम संघोत सुहेला ऐसा नाम सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कूट लखबाई नाम जपत है पार पराई अनक बिगन जय आय सिंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनक जो जनवै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबू न तोवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग जे मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिह पैडै मांद गुबारा हर का नाम संग उजिया राजा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा भयान तप्त काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जह त्रिकामन तुझ आकर कै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकल साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मंतन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि व्योग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन कुआ प्रभु दीना हर हर जन कै ऊट सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाती आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै
हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर पू नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै। संत का संगवड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कछे वरना हुई, नान गुरमुख नाम पावै, जन कोय सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेखे सर्व टंडोल पूज सुनाई, हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास करम त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रत्ना, शरीर कटाए होमे कर राति, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, माँ उदास तपिसर थीवे, अग्न माय होमत प्राण, कनिक सब है वर भूमदान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम साधन, निमक निमक शरीर कटावे, तव भी होमे मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर दे छुट्टै, गर्भ गुमान मन ते हुट्टै, सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न भिख्या टरै, जल तो वै बहु देह नी, शुद्ध काहे काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहु सियान जम का भव व्यापैन, की जतन कर तृष्ण न त्रापै, एक अनेक अगनी बुझे, कूट भाव दरगह नि सिजे, छूट सुनायु पयाल, मुहि व्यापे माया जाल। अवर कर तू सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिन ही माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जी को अपनी शोभा लोरे, साध संगे हो मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरणी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रदान, साध संग जा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिया सब ते ऊंचा, जा का मन हो सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना, पिक है सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक बापू नहीं लिपा। निर्तन को तन तेरो नाओ, निथावे को नव तेरा थाओ, निमाने को प्रम तेरो मान, सगल कटा को देव दान। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे, अपन संगा प्रभराते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक कवर न जान सकोए, सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सास दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम पला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जा सुन रसन बकानी, सगल तान ते उत्तम थान, नानक जी कट वसै हर नाम सलोक। निर्गुण आरे आने आसो, प्रभ सदा संभालो, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभी नालस्त बदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सासवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है, दूध पर जो बन पूजन सुख सूद, वृद्ध पयाव पर साक्षैन मुख पयाव, बैठ को दैन हो निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श ले हो तो नानक सी जय। जी प्रसाद तारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघसै, जे प्रसाद पी वै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमूला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संसात वसा, दीने हस पाव करने तर, सना तिह त्याग और संग्रचन, ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे, नानक काढ़ लेव प्रव्यापे। आदंत जो रखन हार, तिस्यो प्रीत न करै गवार, जा की सिवा नव निध पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सा सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दर गह मान, तिसे बिसार मुग्ध जान। सदा सदै भूलन हार, नानक रखन हार अपार, तन त्याग कौडी संग्रचै, सा छोड़ छूट संग मच्छै। जो चढ़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे। चंदन लेप उतार है तो हे गर्द, प्रीत भस्म संग हो, अंध घूमै पत बिकराल, नानक काट दे हो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बार पे कंतर मल माया, छप सुनाई कच करे छिपाया।
बाहर ज्ञान ध्यान सुनानंतर व्यापैलूप सुभानंतर गण बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसी तरह था जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन सह सुमा सुनंदा कैसी मार्ग पावे कार गहले उड़ निभावे कहाँ बजार बुझे डूरा निष्कही है तू समझे पूरा कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आउस गवन करतार करुणो में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई था सुप्रीत बलुआ के ग्रे पीतर बसे अनंत केल माया रंग रस दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल न आवे बूढ़े चीत बैर विरुद्ध काम क्रोध मोह झूठ विकार मा लोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सुहाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक दीन हार प्रभ छूट कै लागे आन सुहाय नानक न सी जी बिन नावै पत जाय अष्टपति दस वस्तु ले पचै पावै एक बस कारण विखूट गवावे गीना दे दस भी हिरले तो मूड़ा कौका करे जिस ठाकुर से ना ही चारा था कुकी जय सद नमस्कार राजा कैम लागा प्रमीठा सर्व सूखता हूँ मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व तोग नानक तिन पाया गन सब अपनी दे रास खात पीत पर तैन दुलास अपनी अमान कछ बौर सावले अज्ञानी मन रूस करे अपनी प्रतीताप ही खोवे और उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु सिया गहरा कै प्रभ किया गया मन है मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर प्रभूत जान अनेक बिरकी छाया सो रंग लावे उबिन सह मन पछतावे जो दिस सो चालन हार लपट रे उठे अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेहिता को हाथ न आवे के ही मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजुवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती यशो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रुमो अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर पग साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व कुहिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लित विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय वृत्ति सागत की आर जा साच बिना कह उवत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुकावता कै दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन बिरता बिहाई मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बृते सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जंजी कट बस्यो हर नाऊ नानक ताकै बल बल जाओ रैत अवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेग न गाहू भी नवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मे मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभु जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह मन या पह आप आप कर तुन बेरा किसे दूर जुनावत किसे बुझावत नेरा उपाप सियान सगल ती रह तो सब कर जाने तुम की रह तो जिस पाव तिस लय लड़लाए थान तनंतर रह समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जब नानक हरी सलो काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति जे प्रसाद छत्ति अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहि जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद वसै सुख मंदिर तिसै त्या सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बस नाठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई ध्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ बैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तू सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय की उलपार ब्रह्म प्रभु जी जब दर गह मन पावै नानक पत छेती घर जावै जे प्रसाद आरू कंचन देही
लिवलावो तिसराम सुनेही, जे प्रसाद तिरउल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे, जे प्रसाद अपुखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अस्व हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिल्क तना राख रोय प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहते आई ते सहते आई जुई कलख इहां उहां नानक तेरी रख। जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा नूप, जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुनै करना जे प्रसाद पिखै विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जी बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सह समावै। सब प्रभु त्याग बरकत लागू गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुथा को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे सास रे मन मेरे तुता शिवराज। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगासु, प्रभु दया ते कमल प्रगा, प्रभु दया ते कमल विगासु। प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी माया, प्रभु कछु न किन्हु लया। जित जित लागू तित लगै हर नाथ, नानक किन कै कछु नहाथ। श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए, जु जु कह सुमुखता होए। सुन मीता नानक बिनवंता सा, जिना की आचार्य कथाष्टपदी। साधक संग कूजल होत, साध संग मन सगली खोत। साधक संग मिटै अभिमान, साधक संग प्रगटै सुज्ञान। साधक संग बुझै प्रभु नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साधकी महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साधकी शोभा परमाय समानी। साधक संग अगो चिर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होइ सब की रेन, साधक संग मनोहर वैन। साधक संग न कतू तावै, साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सु प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग न बीघा पैर। साधक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही होताप, साधक संग तजै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नान साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबहूं तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त गोचर लहै, साधु कै संग जर सह। साधक संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप फलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कचकालु, दर्शन भेटत होत निहालु। साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लग्या प्रमीठा, साधु कै संग कट गडीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सबरो, नानक साध बेटे संजोग। साधक महिमा वेद न जाने, जीता सुनै ते तब ज्ञानै। साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर। साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत। साधक शोभा उचते उच्ची, साधक शोभा मूचते मूची। साधक शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोय, अवरण अपेखै किस बिन कोय। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी।
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जे क्यों बस्ता को खोदे को चंद लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यो पाव का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगासु जैसे तारु पर आकाशु, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमानु, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसु, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाशु, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खुजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मनवाही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाया दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमित कौन बकाना, ब्रह्म ज्ञानी का गई गत, ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तार है जो अंतर नाम, शर्म में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक, पर सगल निस्तार है स्वदी, मिथ्या नाही रचना पर स्मन में प्रीत निरंजन रस पर, त्र रूप न पिक है नित्र साध की टैर संग हित, कर न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हर है, मन की बास न मन ते टर इंद्रजित पंच दोग ते रहत, नानक कुट मद एक वैसा परस, वैष्णु सोजी सुपर सुप्रसन्न, विष्ण की माया ते हो भिन्न, कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछ है, केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक को वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मंत्र बिनश सगला परम, ओंकार पूजा सगल पार ब्रह्म, शासन पाप अमल हुवे, तिस भगवती की मत उत्तम हुवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंत्र ने अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम महत्म है, शुद्ध है राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नाया वे, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सुखम मैं जाने अस्थूल, चौवरना को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, शासन पावे, जन को कर कृपांतर उतारे, पस प्रेत मूल पात्र को तारे, सर्व रूप का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गामू, काहू जुगत कितै न पाइय धर्मु, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करमु, जिसका मन पार ब्रह्म का निवासु, तिसका नाम सतराम दासु, आत्म राम तिस नदरि आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर, सगल संगात्मु दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा तुमितावै, जीवन मुख सोख कहावै, तैसा अर्क तैसा शोक, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिकाटी, तैसा मान तैसा अभिमान,
तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ईसाई जुगत नानको पुर कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिन आओ आपे करण करावन जो प्रभाव है सोई पुन होगा पसर आप अंत तिरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगासु पार ब्रह्म करता विनाशु सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जनंत न पारावार नानक रचना प्रवृचि बहुविधनक प्रकार स्पदी कई कोट हुए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपे गातम निखोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश प्रमाहे जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरखने पजाय कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सू नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए जिर जीवे कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नेरे सबू ते दूर नानक आवल त्रया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट भोजन नि फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संगतिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यासु तिन को मिलो प्रभु विनाशु कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होया सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पसरु पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने बपात प्रभ ते हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सुधा निहारे को नित्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण है जल तल महियल सोएष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई हो किन मैं ताप ताप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार तर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा सुमाई प्रभावै मानुक गत भावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पथ सुधारै आप करै अपन विचारै दुआ सिरिया का आप स्वामी खेलै विकसे अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवरण आयावै कहु मानुक ते क्या हुए आवै जो पावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब किचले जो तिस पावे सोई करे अन जानत विख्या मैं रचै जे जान तापना बचै पर मैं भूला दै तिस पावे निमक मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक दे जना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृश्य कछु न आवे तिस तत्काल दै तिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीश ता का लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की राज कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही सहाथ करण करावन सर्व कुनाथ आज्ञाकारी बपुरा जीव जो तिस पावे सोई पंथी कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हरख रंग हसे कबू निंद छिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार
कबू नृत्य करे भोपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो त्रवात, कबू हो वह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू कीर्त में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभरा कहती वही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कबू हुए पंडित करे बखियान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद साधिक मुख्यान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जी, यानिक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, ज्यों प्रपावे तिवै नचावे, जो पावे सोई हुई नानक दूजावर न खोए, कबू सात संगत उपावे, सुस्थान थे बौर न आवे, अंतर ज्ञान प्रगाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नामृति करांग, सदा बस पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जल आये कटाना, त्यों ज्योति संग जो समान न मिट गए, गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सत कुरबान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आय, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकार, या नानक गर्भ गले इष्टपदी, इसके अंतर आज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जान मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहा वह जन मर भोजन परमा वह धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्ता गय सुख पावे, धनवंता हुए कर गर्भावे, तन समान कर संग न जावे, बौलस कर मान कूपर करे आस, फल भीतरता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन मैं हुए जाए पशमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सूजन नानक दर गए परवान, कूट कर्म करे हो तारी, श्रम पावे सगले फिर थारी, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे, हर दर गय को कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट न आवे, सर्व किरी जा का मन होए, कहु नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोई, जब जाने मैं किछ करता, तब लग गर्व जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नि चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संगवाई, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहज खटेला कुटतावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, भोग विख्या की करे, न तृप्तावे खप कमरे, बिना संतोख नहीं को राज, सुपन मनोज व्यर्थे सबका जय, नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़ भागी जिसे प्राप्त हुए, करण करावने आपे आप, सदा सुदा नान कर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ का विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप प्रभ सोए, जो किछ किन्नु सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग, पूजय देखे करे भवे का पय का पय, अनेक मरन बिन सह आवे न जाए, नान सदी रे समाये, आप उपदेश समझे आप, फिर चे सब के साथ, आप गिनो अपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार, पुस्ते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर एक कैसो, अपने चलता करने हार, कौत करे रंग आपार, मन मैं मन अपने माहि, नान कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद, गिने वकियानी सच सच सत, सब किन्ना कोट मध्य किने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, असुंदर पार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बख्यानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदर नहार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार पदी, संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन, संत के हथे को रखै न कोई, संत कै दुखन थान प्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहे, नान संत पावे ताहि भीगत पाए, संत का निंदक मात थाए, संत का निंदक टिक न पाए,
संत का निंदक महतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद विष्टे टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किचना है, अपन बीजा पे ही खाई, संत के दुखी कौर न रखन हार, नाम संत भावे तले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, जो जल विहून मछली तरफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव किंद नहीं त्रापै, संत का दुखी छुट्टे केला, जो बुआड़ तिलकी तुम्हारी दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, कृत निंद का तुर ही पया, नान जुत भावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्ट हुए, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पया कीर्त न मिटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट दिसकी करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुत करो दिन रात, सत्या हो सास ग्रास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठी, अपना केला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आप नाम देवड भागी, नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाय, अष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अगाए, बौर न तृष्ण लग गए आए, मारे रखे कुआ, मानु कह किच नाही हाथ, इसका हुक्म भूस कोए, जिसका नाम रखंठ रोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघन न लग गए कोए, उस्तुत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, सासंग बिन सह सब संग, चरण चलो मारु गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, उसे तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत की उसो जी जाने, नाम संग जिसका मनवानिया, नानक तिना निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, वंदन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिजन की आशा, तिसकी कटिए जम की भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुकम सोये सूल, न किच जन्मे न किच मरे, आपन चलता आप ही करे, अवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रचता पुथाप, अपनासी नाही किच कांड, धारण धार उभरे मंड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुशोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारनु, प्रभ के सेवक दुख बिसार।

सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम ध्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाही जन्म रह फिर आवै जाए ऊच नीच इसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना भिद किनो विस्तार प्रभ मनासी एक अंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे हो पूर्ण समठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाऊ जप जप जीवै नानक हरनाऊ नाम के तारी सगले जंत नाम के तारी खंड ब्रह्मांड नाम के तारी सिमरत वेद पुराण नाम के तारी सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारी आकाश पाताल नाम के तारी सगल आकार नाम के तारी पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाई नानक चौथी पद में सो जनगत पाई रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की वाणी सत पुरख समाहि समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन सत उपदेश सत तेजन जा कर हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जी कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने की या नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया विस्मन विस्म पय विस्माद जिन बुझिया दिहाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रही गुर के वचन पदार्थ लहे वे दाते दुकाटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सोवड भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास पर वे आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पै ते निरप हुए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस गडाई ताको भिन्ना कहना जाई बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नान सो सेवक सासा संवार है अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मित कोई न लखे प्रभ के सेवक को न पहुँचे प्रभ के सेवक उचते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा तिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रखे भस्म करे लश्कर कोट लखे जिसका सास न काढ ताप ताकू राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहुपात तिसके करत बिरते जात मारन राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रबल खिडानी बारंग बार बार प्रभ जपिय पिय मृत्यु मंथन त्रपिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया
तेस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम कर संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्र नाम मह नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सुध काम बोलो जा जीवा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करे भगता तुम कह चाई प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह क न जानो आठ पहर प्रभ सहजूरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतगुर के जिन जाने सतगुर तिसका नाऊ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख के गुरु दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी सतगुर सिख का अलत पल सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन विच सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रा सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेव गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को भल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक अब नहीं कछ परम सह सियान भुलया ना जाइये नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करन आघाने मन संतो का तुम पतिया ने पूरा गुरु क्यों जा का मंत्र अमृत दृष्ट पिक है हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जी पाए कुष्ठत अनेक सतगुर पूर्ण भवेद काहु बोल न पहुंचर प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंदन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सदबलिहारी सदगुरे अपने नान जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने इव हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए इस प्रकार नाही कदे विनाश चाकै मन प्रगटे गुण दास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संग न ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीप प्रगासी नानक परमो दुख तहते नासी तप्त माय ठाठ वरताई अनद पै दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपो हो बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी खित पाई चुके प्रभु गवन सुन नानक हर जस्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर को सोए उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनखबार नानक भले हारी श्लोक साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक धन सार अष्टपति संत जना मिल करो विचार एक मेरे नाम आधार अवर उपाव समीत विचारो चरण कमलज मैं उतारो करण कार सुप्रभ समरथ दृढ़ कर गाहो नाम हरवत एव धन संचो भगवंत संत जना का निर्मल मंत्री कासुरा को मनवाए सर्व लोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचै मई सो सुख साधु संग परीत
ये शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे अरव कदलाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जब नानक दरगह परवान मन प्रबुद्ध हर कहनाई दा दिस्ता वथिया बैठाई ताको बिघन लागे कोए जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पौ बिन सह पूर्ण हो आस भगत पाया तम प्रगास तित कर जाए बसे विनाशी कौ नानक काटी जम्पासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचू काचा आवा गवन मिटै प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव यो रतन जनु का हुए उदार हार हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छूटन हारे सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भक्त करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटांबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन वाही जन्म जन्म के किल विक जाही आव जपो अवरा नाम जपाऊ सुनत कहत रहत गत पाओ सार पूत सत हर को नाऊ सह सुभाय नानु गुण गाव तेरी उत्तर सुमैल बिन सुजाय हो मैं बिक फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सात गिरा सर नाम सुमाल छाड़ सियान सगली मना सात सुन पावै सच धना हर पूंजी सच करो व्यवहार यहां सुख दर गै जयकार सर ने अंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर है प्रभ आप अनेक विसार एक ते भय करात प्राचित गए मंथन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ चरण कमल शोला कह प्रीत भक्त करूं प्रभ की नित नीत हे कोटेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सारु प्रभ की दृष्ट मां सुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ कह संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगासन दिल लिवलाग बटभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक किन्नु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इचपनी श्रद्धा सब पूरी रब रया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जी काल न पाने सो क्यों बिसरै जी किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकती काटै जन्म जन्म का टूटा काटै गुर पूरै तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया सा जन संत करो ए काम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रो पेग दर सुख हुए
मन बिकसै साध चरण तोय। भगत जिना कै मंत्र रंग बिरला को पावै संग। एक बस्ती जय कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए। रब अखसंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुम्हारी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गायन। राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत। सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास। लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। अपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब कार पछना दृष्टिता पापुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसह व्यापत। जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कहा किसोवत परम। आपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक कह रगम पार तब नरक सुर कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुभाई तब शिव शक्त कहो हो कित ठाई। जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कवन निडर कवन कत डर है। अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपनासन तय जिन मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते। आपन आपा पिए चर जा नानक आपन रूपा पियो पर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौकीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तय किसह भूख कवन तृप्तावै। करण करावन करने हारु नानक करते का नाही सुमारु। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलाया पै परवीन तह वेद कतेब कहा कोचीन। जब अपने आप आपुर तारे तो सगन अब सगन कहा विचार। जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल अचेत अपेत समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को अपह आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय कह एक भगवंता तय कौन अचिंत किसला कह चिंता। जय अपना पाप तियारा तह कौन कथै कौन सुन न हारा। बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आपह पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार।
पाप पुन तै भई कहावत को नरक को सुरग बंचावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह भरम पै भार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपज्ञान अपन खेल आप कर देखै खेल संकुचै तो नानक कहै जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दोह पाका आपे खनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौत करै आनंद चोज आपै रस भोगन निर्जोग जिस भावै तिस अपनाई लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथाह अगंते अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक।

कह दृष्टार अष्टपति। आप कथय आप सुनने हार, आप है का विस्तार। जात इस पावे तां सृष्ट उपाय, आपने पाने ले समाये। तुम ते भिन्न नहीं किच हुए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सब

जिस रखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै, तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राए, जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ।

चरण पूरहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपा। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जीअन बोपात, जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक इक जानिया। जन लागा हरे कै नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई।

गुण गावहु प्रपरमानंद। राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करहु उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुआओ। आठ पहर प्राप्य खुह नीरा, मिटे ज्ञान बिनसय अंधीरा। सुन उपदेश हृदय बसाबहु, मन इच्छे नानक फल पावहु।

जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपो लिवलाई, दुख दर्द मन ते पहुँचाई।

नानक बहुर नया वह जाहि, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरे रखन हार त्याय, निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोए न पहुंचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतरजामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताकै निकट नयावत काल।

सब कह मद अलिप तो रहे, जो किच कहना सुआ पे कह, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावै ता ले समाए। इस्ते हुए सुनाही बुरा उरै, कहो किने कछ करा, भला कर तू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की, आप साज धारी सब साच उत्भूत अपन सगरा, ताकि गतमित कही न जाए, दूसर हुए थसो जी पाए, जिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिसदा सुख हुए, आप मिलाए ले प्रभ सोए हो, तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का यह सुवाऊ, जन कै संचित आवै नाऊ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर कीर्तन चिंद। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करो, साथ संग अगुण सागर तरहो। हर तन के पर ले हो पंडार, नान गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद, साथ संग पज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चेचित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंग बार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कुमावत होत उदार। आप तरह लोक कै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लाका हर रंग। जय जय शब्द नाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उतरे तिन कै साथे। शरण जो

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेव तार भुखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपां लख होहे ता एक न चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तान खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथ ना कथी ना आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थाक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसाए वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार

निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोह चोटा ना खाए मन जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ स्यों परगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन पावे मुख दुआर मन परवार साधार मन तर तारी गुर सिख मन नानक पव है ना भेखो ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंच सोह ही दार राजान पंचा का गुर एक त्यान जेको कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर पर होर तिस ते पार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सपना लिखिया गुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोतै उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान।

कोए, वेण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वखत कवण, कवण थेत कवण वार। कवण से रुति माह कवण, जित होआ आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वखत न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सरठी कौ साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाणै। अगै गया ना सोहै, पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओड़क ओड़क भाल, थके वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा, असलु एक तात। लिखा होए ता लिखिए, लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। सलाही सलाहे एति सुरत ना पाईया। नदियां अतै वाह पवै, समुंद न जानिए। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल। तन कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मन होना भी सरा है। अंत न सिफ ते कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत। अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण किते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाणै कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊचा थाओ, ऊचे उपर ऊचा नाओ। ए वड ऊचा होवै कोए, तिस ऊचे कौ जाणै सोए।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार।

नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशीर्दे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सोएकै नमस्तंग अनेकै नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरधाते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजिबे नमस्तस्त अजिबे आदेशं आदेशे नमस्तंग अपीसे नमस्तंग नृतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै नमस्तंग अजनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तंग नृसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमित है रफीक है असंद है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है कुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती बेबूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अपरेत देवे सुतर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग इष्णानंग नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे आरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरुद्ध करता अधो उर्द अर्धं अगं ओग हरता परं परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सेवदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद
अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्तीन धाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रेद सिद्धं निवासी चरपट छंद तुवा प्रसाद अमृत कर में अमृत तर में अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव आपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जिह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मनई पुरतीन लोक चौदह के बिखय जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रकपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नित पाखत नित कूट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनासो आजान बाहु शाहान शाहौ राजान राज पहनान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार महिम मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी शांत त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिशय अधिशय अदृशय अकृशय भगवती शांत व प्रसाद कथते के अशेज दिस के अभेज भेस के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभेज लोक के अदित सुख के अवतूत वर्ण के विभूत करण
के राजं प्रभा है, कि धर्मं तुजा है, कि आशोक वर्ण है, कि सर्वा आभरण है, कि जगतं कृति है, कि शतरंग शतरी है, के ब्रह्मं स्वरूपे, के अनुपौ अनुपे, के आदो अदेव है, कि आप अपेव है, कि चित्रंग बहीने, के एक अधीन है, के रोजी रजा के रही मेरे हक है, के पाक बेअब है, के गैबुल गैब है, के अप बुल गुनाह है, के शाह न शाह है, के कारनुक निंद है, के रोजी दहन है, के राजक रहीम है, के कर्मं करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र साजा है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र काला है, के सर्वत्र पाला है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काजा है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र सोख है, के सर्वत्र पोखा है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कली में, के परमं फही में, के आकल अलाम में, के साहिब कलाम में, के हुसन अलवजू है, तमामुल रजू है, हमें सो सलाम है, सलीकत मुदाम है, गनीमल सिकस्त है, गरीबुल परसत है, बिलंदल मकान है, जमीन जमान है, तमीजुल तमाम है, रजूअल निधान है, हरीफल अजीम है, रजाइक यकीन है, अनेक उतरंग हैं, अपेद हैं, अपंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनी मुल्खे राज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुगत प्रभा हैं, सुजुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूप है, अनाद स्वरूप, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिभरंग त्रिभादे, अगंजे अगाधे, सुभं सर्वभागे, सुसर्वा अनुरागे, त्रिपुगत स्वरूप है, अशुज है, अशुत है, कि नरकं प्रणाश है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, नचंत है, सुनंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल शांत व प्रसाद, नमो नरक नासे, सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, परमात्मं परमाते, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, नृसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती शंतो प्रसाद, कि जाहर जहूर है, कि हाजर हजूर है, हमें सो सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुस्न चराग है, कि कामल करीम है, कि राजक रहीम है, कि रोजी दहंद है, कि राजक रहंद है, क्रीमुल कुमाल है, कि हुस्न जमाल है, गनीमुल खिराज है, ग्रीबुल निवाज है, हरीफुल शिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं प्रणाश है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाइक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब की राह है, के नरकं प्रणाश है, बहस्तुल निवास है, के सर्बुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईश है, समस्तुल अदीश है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीन अलजमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, के जोरत जमाल है, के अचलं प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलं अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार शंतो अप्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरपर अगंजो, हर नर प्रपंजो, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बरनर अमंड,
अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशे ज्यो अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनाश तृत तर तुरास अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार आ ढीठ कर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मन शांत त्व प्रसाद करुणाल है अर्काल है खलखंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृताकृत है तरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो योग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे ओ कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे ओ मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे
तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ाण को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देफन दिन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाड जैत धुन पापन के भौ पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इष्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा कौ सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पास को मिरतान कौ पूजन थायो पूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान कौ पूजत है पास को मिरतान कौ पूजन थायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मुहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करियै सब बैरन को आज संग्रियै पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सेव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जबन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जबन काल सब जगत बनायो देवदायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जान है। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ करपाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार काचीन तनह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन

ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके पाप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तिसै ब्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सो रसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस फण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कह गहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहारो।

पाले अकीर्त कणा पूरण दृष्ट तेरी राम। धन सो वेला घड़ी धन, धन मूरत पल सार। धन सो दिन स संजोगड़ा,

स्मादृपी स्मादृं युष्मान्नागी प्रजन्तु विषमाद पूर्णिष्माद पाणिष्माद अग्नि खे देविनाणि विषमादृतिष्माद काणिष्माद चल के प्राणी विषमाद संजोग विषमाद विजोग विषमाद भूख विषमाद भोग विषमाद सिप्तिष्माद चाला विषमाद

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिरड़ा हर त्यावहो गुरमुख हर फल पावहो सुख सोहिरड़ा हर त्यावहो गुरमुख हर फल पावहो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावहो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गोरे अपने बिटहो जिन कार्ज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जपहो सुख फल।

सुख सुरला हर त्यावो, सुन हर गुण पीने सहज सवाए, गुरमत सहजे नाम त्याए, जिनका तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा किनी मेरे स्वामी, तिन अंदन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुभाए, परम सन्मान योग तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोदी च सभाए मान

तुम मात पिता हम बारक, तुमरी कृपा में सुख, कोई न जाने तुमरा उचे ते सगल समग्र।

कहो नानक नित ए वैत्याई, गत हुवे संतह लग पाई। आसा महला पंजवां, उठत बैठत सोवत त्याई, मार्ग चलत हरे हर गाई है।

वै कोई सगल सृष्टि आके चरण मल धोई जो प्राणी काहू न आवत काम संत प्रसाद ताकू जपिय नाम साध संग मन सो

करता, आप अलिपा निर्गुण रहता। कर्ण करावन अंतर जामी, अनद करे नानक का स्वामी।

किल बिख बिनासे दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की तूर रहाव। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस पेटे जिस तुर संजोग। मन आनंद मंत्र गुर दिया, त्रिशन बुझी मन ने चलथिया। नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। आसा महला पंजवा, मिटी ते आस अज्ञान अंधेरे। साध सेवा अग कटे कनेरे, सुख सहज आनंद घना। गुर सेवा ते भय मन निर्मल, हार हार हार हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का

खाओ, हर माला उर अंतर तार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय सुमाले मुख हर हर बोले, सूजन इतुत कतह न डूले, कहु नानक जो राचे नाई, हर माला ताके संग जाई, आसा महल्ला पंजवा, जिसका सब किछ तिसका हुए, तिस जन लेप न व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई पल जन कै,

प्यास मन लागी, सहज आनंद बसै बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय महदी जय। आसा महला पंजवां। मन त्रिपतानु मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया किरपाल। संत प्रसाद भली बनी, जा कै ग्रह सब किच है पूरन। सो

सगल उदारे, प्रभ की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले न भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान। आसा महला पंजवा। भूपत हुए कै राजक माया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचित संचित थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मजहरिया, गर्भ गर्भ वाहू मह परिया रहा, निर्भव होयो भया निहंगा, चीत ना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया सुबाहा, निकसया फूक ता होए गयो सुहा, ऊचे मंदिर महल अररानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच

पाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे हुई कै मीठी, गुर प्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके

अब मेरु मन भया आनंद भौ चुका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया घर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट।

अगचार संत रहत सुनो मेरे भाई, वाकी महिमा कथन न जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक सुमाने, प्रभ अपने विनयवर न जाने। कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन।

अमोघ दर्श सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतह टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवा, सगल सूख जपे कै नाम, सगल धर्म हर के गुण गाम। महा पवित्र साध का संग, जिस भेटत लागै प्रभ रंग। गुर प्रसाद ओए आनंद पावै, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकि गतमित कहन न जावै, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान। साध संगत जाकै हर हर नाम, प्रगटेव सोजन सगले भवन। पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको भेट्यो हर हर राय। ताकि गतमित कथन न जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवो। उन साधा का दर्शन पावो, मुहे गरीब को लिहोर लाए। नानक आए पै शरणाए, आसा महला पंजवा। आठ पहर

चवर सब ऊपर चुल्लै, जाका चवर सब ऊपर झूलै, ताका धूप सदा प्रफुल्लै। घट घट संपट जा, घट घट संपट है रे जाका, अभग सभा संग है साधा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत, जिसह प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो।

पाई ठगौली सब जग जोहिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहिया, गुरमुख राम गुरमुख नाम लगे से सोहिया, वर्त नेम करता के पुनः चरना, तट तीर्थ भवे सब धरना, से उबरे जे सतगुर की सरना, माया मोहे सबु जग बाधा, हौ मैं पचै मन मुख मूराखा, गुरु नानक बहा पकर हमरा खा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब बिसरै स्वामी, ईहा ऊहा काम न प्राणी, संत तृप्ता से हर हर त्याय, कर कृपा अपने नाई लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत कौ जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किछ दिया तिस चितवत नाही।

अवर काहू पह बहुड़ न जावह, सदा आनंद आनंदी साहिब गुण निदान नित नित जापी है। बलिहारी तिस संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहाओ। जाका दान निखूटे नाही, भली भात सब सहज सुमाही। जाकी बख्श न मिटे कोई, मन वासाइय साचा सोई। सगल समग्री गृह जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख न चूरन। ओट गही निर्भव पद पाई है, सा सा सु गुण निद गाई है। दूर ना हुई कतहु जाई है, नदर करेता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमी मिटिया तन का दुख, मन सगल कौ हुआ सुख। कर कृपा गुरु दीनु नाऊ, बल बल तिस सतगुर कौ जाऊ।

जिस गुर शब्द निरंतर, गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर, नाम त्या

पावन जुरी बच्चे दोने बच्चे शुभायमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुके हैं जी। सो परिवार वल हुक्म होया सी कि जातू मेरे वल हैं ता क्या मां शंदा तुर सब कुछ मैंने सौंपया जा तेरा बंदा

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस घर दे रोग कलेश दुख दूर हो जांदे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जांदे, घर परिवारां दे भी कलेश मुक जांदे ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जांदे। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे, रहमत करे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।